0: यो का ट्रेडिशनल मैंने कह बिल्मा का ये डेक में एवरीडे 5 AM का 6 PM तीना लियो लोग रेडी होंगा
1: यो हमारा इंडियन डेरे का नमक कंगा मा तो ये यो लोग रेडी हो

0: यो का ट्रेडिशनल मैंने कहे बिल मगाई डेक में एवरीडे 5 AM का 6 PM चिना लियो लोग रेडी होगा
1: आई नीड गुड चिले आई लिव परोय ऑन द वे नाइट यार मैं रेडी